0: 92 MHz Divehi FM. Abadues emmegat.
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

0: ती वही एफएम नुआधिया 1 मेगाहर्ट्ज़।
1: मीहुं बुने लोईपकी एतं हास वाहके बुने दे हुसासके एनम विस मीके में उफाविरकं गेनुवनी ए वाहकता कायको हिक्केम रागे कुलला मिहुनीमा